नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ यूं हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाइनो बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। आज हम बात करेंगे बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के नुकसान को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। वे चाहते हैं श्रोता साथियों कि उनका बच्चा सफल बने, सम्मान पाए और जीवन में आगे बढ़े।
0: जी हाँ,
1: लेकिन कई बार बच्चों का भला करने की इसी कोशिश में हम उन पर अपनी पसंद और अपनी अधूरी इच्छाएं थोपने लगते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: हम यह तय करने लगते हैं कि बच्चों को क्या बनाना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए या किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल श्रोता साथियों ये उठता है कि क्या बच्चों के सपनों और रुचियों को नजरअंदाज करके उन्हें वास्तव में सफल बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में जानेंगे कशिश इस विषय पर विस्तार से ढेर सारी बातों को। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के नुकसान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे साथियों को ये बता दिया था कि कई माता पिता अपनी रुचि और अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। वो ये निश्चित करते हैं कि उनके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा अपनी रुचियों पर ध्यान न देकर हमारी यानी कि माता पिता की रुचियों पर ध्यान देने लगता है तो वो अपना भविष्य जी नहीं पाता और अपने जीवन को भी नहीं जी पाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हम कह सकते हैं कि बच्चों के आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि दोस्तों जब बच्चों की बात सुने बिना उनके लिए फैसले किए जाते हैं तो इससे धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनकी रुचियों का कोई महत्व ही नहीं है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण नहीं है। अंजलि जी, जब किसी बच्चे को बार बार ये बताया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वह अपने निर्णयों पर भरोसा करना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल,
0: फिर धीरे धीरे वह हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर ही निर्भर होने लगता है। ऐसे में दोस्तों ये कहा जाता है कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव होती है और जब ये कमजोर पड़ जाए तो बच्चों का विकास भी इसमें प्रभावित हो सकता है।
1: जी हाँ, यही अब बात आती है कशिश के प्रतिभा और उनकी रुचियां दब सकती हैं। दोस्तों हर बच्चा अपनी अलग पहचान और क्षमता लेकर जन्म लेता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी को खेल पसंद होता है कशिश, तो किसी को संगीत, तो किसी को चित्रकला और लेखन।
0: जी जी,
1: लेकिन जब बच्चों को अपनी रुचि के बजाय किसी और दिशा में धकेला जाता है तो उनकी स्वाभाविक प्रतिभा उभर नहीं पाती।
0: बिल्कुल,
1: कई बार बच्चे मजबूरी में वह करते रहते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है, जबकि उनकी असली क्षमता किसी और क्षेत्र में होती है।
0: जी हाँ,
1: इस तरह समाज भी कई प्रभावशाली बच्चों को खो देता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के साथ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो ही जाती है। माता पिता सोचते हैं कि मेरा ये बनने का सपना था, मैं नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे को बनाऊंगा, भले ही उसमें वो प्रतिभा हो ही या नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों की रुचि को, उनकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: जब उनकी प्रतिभा उस चीज में है जो हम उसे बनाना चाहते हैं तो ही उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना है।
0: बिल्कुल,
1: अन्यथा जबरदस्ती अपने सपने हमारे बच्चों पर हमें नहीं थोपने हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने भी सही कही। यही अगर बात करें पढ़ाई और काम, बच्चों को बोझ लगने लगता है तो साथियों जब कोई काम मन से नहीं किया जाता है तो उसमें आनंद नहीं आता है। और ये बात जो है वो हमारे माता पिता पर भी लागू होती है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि श्रोता साथियों हम खुद ही का उदाहरण अगर देख लें तो जब हम किसी कार्य को करते हैं और जब हम उस कार्य से ऊब जाते हैं तो हम उस कार्य में आनंद नहीं लेते हैं और आगे जाकर हम उस कार्य को करना चाहते ही नहीं है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों हम अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? यदि बच्चा अपनी पसंद के बजाय केवल दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई या फिर कोई गतिविधि कर रहा है तो धीरे धीरे उसका भी उत्साह कम होने लगता है।
1: जी जी,
0: वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने के बजाय अंजलि जी उसे एक बोझ समझने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है श्रोता साथियों कि उसकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन दोनों इस चीज में प्रभावित होने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का विकास रुक जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि माता पिता अगर अपने सपने बच्चों पर थोपते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी हमारी बातें चल रही है, बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के क्या नुकसान है।
1: बिल्कुल,
0: हमने जाना कि इससे आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, प्रतिभा और रुचियां दब जाती है, पढ़ाई और काम बोझ लगने लगता है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ कशिश हम देखते हैं कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लगातार अपेक्षाओं का बोझ कशिश बच्चों को मानसिक दबाव पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। यह चिंता और तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ बच्चे चुपचाप दबाव सहते रहते हैं, जबकि कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन, उदासी और निराशा भी दिखाई देने लगती है। इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझना और उनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात कर रिश्तों की, तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता विश्वास और संवाद पर आधारित होता है। लेकिन अंजलि जी, जब बच्चों को ये लगने लगता है कि उनके बातों को महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, तो वे अपने मन की बातें साझा करना भी कम कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे श्रोता साथियों संवाद में कमी होने लगती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है। ऐसे में हमें ये नहीं करना है श्रोता साथियों, क्योंकि एक स्वस्थ परिवार वही होता है जहाँ बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सके। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश, अब यही बात आती है कि अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो बच्चे निर्णय भी नहीं ले पाते।
1: बिल्कुल,
0: उनके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: जी।
0: लेकिन यदि हर निर्णय माता पिता ही लेते रहे तो बच्चे स्वयं सोचने और निर्णय लेने का अभ्यास ही नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल,
0: भविष्य में जब उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं तो वे असमंजस्य में पड़ जाते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। इस तरीके की चीजें उनके सामने आती है, इसलिए बच्चों को उम्र के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने के अवसर हमें जरूर देने हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें पता चले कि जो वे निर्णय ले रहे हैं उसमें सही निर्णय कौन सा है और गलत निर्णय कौन सा है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: इसी के साथ दोस्तों, जब बच्चों पर किसी और के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी होती है तो वे असफलता से अधिक डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो वे अपने माता पिता को निराश कर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: यह डर उन्हें नए प्रयोग करने के जोखिम लेने से रोकने लगता है। जबकि सीखने और आगे बढ़ने के लिए गलतियां और असफलता से सीखना उतना ही जरूरी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अगर बात करें अपनी पहचान खोने के खतरे की, तो हर बच्चे की अपनी सोच, अपनी रुचि और अपना व्यक्तित्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब वह लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है तो हम देखते हैं कि कई बार वह अपनी असली पहचान से भी दूर हो जाता है। उसे श्रोता साथियों ये समझ ही नहीं आता कि वह वास्तव में चाहता क्या है और किस काम में उसे खुशी मिलती है। ऐसे में जीवन की वास्तविक संतुष्टि बच्चों को तभी मिलती है साथियों, जब वे अपने मन की करें, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। क्योंकि अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि बच्चों को मार्गदर्शन देना जरूरी है, लेकिन उनके लिए हर निर्णय लेना जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: बच्चों को अनुभव, सलाह और सहयोग की जरूरत होती है साथियों, नियंत्रण और दबाव की नहीं। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि हर बच्चे का एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी रुचियाँ होती है, अपने सपने होते हैं और क्षमताएं होती हैं। यदि हम उन सपनों को समझेंगे साथियों, उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तो बच्चे न केवल सफल होंगे बल्कि खुश और संतुष्ट भी रहेंगे।
0: बिल्कुल, इसी के साथ कशिश कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बच्चों का पालन पोषण केवल उन्हें बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने की कला भी है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर हम ये मान लेते हैं श्रोता साथियों कि जीवन का अनुभव हमारे पास अधिक है, इसलिए हम बच्चों के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बदलते समय के साथ बच्चों की सोच, उनकी रुचि और सपने भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उन्हें समझना, उनकी बातों को महत्व देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। जिस राह पर चलकर एक व्यक्ति सफल हुआ है, जरूरी नहीं है कि वही राह हर बच्चे के लिए भी सही हो। हर बच्चे की अपनी विशेषता, अपनी गति, अपनी मंजिल होती है। इसलिए बच्चों को एक तय सांचे में ढालने के बजाय उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए कि एक बच्चे को उसकी पसंद की उड़ान देने का साहस शायद आज छोटा कदम लगे, लेकिन यही कदम कशिश कल उसके भविष्य, उसके आत्मसम्मान और उसकी सच्ची खुशी की नींव बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए बच्चों को आदेश नहीं, समझ दे, दबाव से नहीं, प्रेरणा से और नियंत्रण से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही एक खुशहाल बचपन और सशक्त भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है।
1: जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें ढेर सारी रही कि एक माता पिता होने के नाते अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को हमें अपने बच्चों पर नहीं थोपना है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का विकास रुक जाता है, साथ ही उनके जीवन की जो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं वो भी प्रभावित होने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसी ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम जान पाए हैं। अब देख रहे हैं साथियों कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा तो अंजलि जी हम जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर सुनते हैं अंतिम गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, प्रकृति ने मानव को अनेक अनमोल उपहार दिए जिनमें पेड़ पौधे का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: पेड़ केवल हरियाली का प्रतीक नहीं है बल्कि वे जीवन के आधार है

0: मानव का अस्तित्व है, पशु पक्षियों का जीवन है, पर्यावरण का संतुलन और पृथ्वी की सुंदरता सभी पेड़ों पर निर्भर है। यदि पेड़ है तो स्वच्छ हवा है, शुद्ध जल है, संतुलित जलवायु है और सुरक्षित भविष्य है। इसीलिए कहना बिल्कुल उचित है कशिश कि हरे भरे पेड़ सुरक्षित जीवन की सबसे बड़ी गारंटी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हरे भरे वन और सुरक्षित जीवन को लेकर।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रकृति है वो मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जंगलों और वनों के बिना हम कह सकते हैं कि की ही नहीं जा सकती है। साथियों, हरे भरे वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार है, पर्यावरण के रक्षक है और मानव सभ्यता के सच्चे संरक्षक है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, हम देखते हैं कि जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को जीवंत बनाए रखने के लिए वनों की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है, तब हरे भरे वन और सुरक्षित जीवन का विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है।
1: जी हाँ कशिश, आज विकास की दौड़ में जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ रही है और इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में पेड़ों का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, हमें समझना होगा कि पेड़ों की रक्षा करना वास्तव में अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये हम सब मानते हैं कशिश। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक बड़ा पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि पेड़ न हो कशिश, तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियां और अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी लाखों परिवार अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों पर निर्भर है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन का भी आधार है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही सुरक्षित जीवन का आधार भी वनों को माना गया है। हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षित जीवन की बात करते हैं तो उसके पीछे वनों की महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, वन अनेक प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये जलवायु को संतुलित रखते हैं। जैसे कि वन जो है वो तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं जागृति जी, वे वातावरण में नमी बनाए रखते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में घने वन होते हैं वहाँ मौसम अपेक्षाकृत संतुलित ही रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज श्रोता साथियों दुनिया में बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही प्रमुख कारण है वनों की कटाई का। यदि वन नष्ट होते रहेंगे तो पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
1: जी हाँ,
0: और फिर हम देखेंगे कि मानव जीवन भी गंभीर खतरों में पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेड़ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही है। वे वायु प्रदूषण को कम करते हैं, वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं।
0: जी,
1: पेड़ों की हरियाली वातावरण को ठंडा करती है और गर्मी के प्रभाव को कम करती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं कशिश कि शहरों में बढ़ती गर्मी और प्रदूषण का मुख्य कारण पेड़ों की कमी है। जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत शुद्ध और स्वस्थ रहता है।
0: जी जी,
1: पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह कार्य करते हैं। पेड़ वर्षा को आकर्षित करने में सहायता करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है जिससे वर्षा का पानी जमीन में समा जाता है और भूजल स्तर बढ़ता है। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ जल स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। पेड़ की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और वर्षा का जल बहकर नष्ट हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसका परिणाम सूखे और जल संकट के रूप में सामने आता है। इसीलिए जल संरक्षण और पेड़ संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हरे भरे वन जो हैं वो सुरक्षित जीवन का आधार हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जैसा कि अब हम जान रहे हैं कि वन किस प्रकार से हर चीज में, हर क्षेत्र में हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आपसे कि हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आपसे ये कहना चाहेंगे कि पेड़ बचाओ, जल बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। हम देखते हैं कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखा, इसके बहुत खतरनाक परिणाम है। वैज्ञानिकों का मानना है कशिश की पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि पेड़ लगाना बहुत आसान है श्रोता साथियों, और अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम जलवायु को बचाने का महाअभियान भी शुरू कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ हम देखते हैं कि वन लाखों प्रकार के पशु पक्षियों, कीट पतंगों और वनस्पतियों का घर है। पृथ्वी की जैव विविधता का बड़ा हिस्सा श्रोता साथियों जंगलों में निवास करता है। यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो अनेक जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना श्रोता साथियों प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जागृति जी, ये कहना गलत नहीं है कि वन संरक्षण केवल पेड़ों की रक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत की रक्षा है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि हरे भरे वन मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वनों से प्राप्त शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। साथ ही श्रोता साथियों, अनेक औषधीय पौधे जो हैं वो वनों में पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिनसे जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाई जाती है। जहाँ जागृति जी आज मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, वहाँ वैज्ञानिक शोधों से ये बात पता चली है कि हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य हमारा बेहतर होता है। साथ ही जंगलों की शांति और हरियाली मन को सुकून प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश कि वर्तमान समय में वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं रहा बल्कि आवश्यकता बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम कुछ पेड़ लगाने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: विद्यालय, गांव, शहरों और खेतों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। लेकिन केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक पौधे बड़े होकर वृक्ष न बन जाए तब तक उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल
0: युवा साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है वृक्षारोपण में। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और यदि युवा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को अपना मिशन बना लेंगे कशिश, तो देश में हरित क्रांति लाई जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है। युवा केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रह रहे बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ों की कटाई को रोक रहे हैं और हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को एक पेड़ अनेक लाभ की बात को भी अपनाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, एक पेड़ जो है वो केवल छाया ही नहीं देता बल्कि अनेक प्रकार के लाभ भी प्रदान करता है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, पक्षियों को आश्रय देता है, मिट्टी का संरक्षण करता है, साथ ही वहीं वर्षा को बढ़ावा भी देता है और पर्यावरण को सुंदर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जागृति जी, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वास्तव में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे होते हैं।
0: जी हाँ,
1: हम देख सकते हैं दोस्तों कि वनों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी भागीदारी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। साथियों, हमें ऐसा विकास करना होगा जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए और लंबे समय तक टिकाऊ हो सके।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कहा जा सकता है कि हरे भरे पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि सुरक्षित जीवन की नींव है। वे हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य प्रदान करते हैं। यदि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ हमारी रक्षा करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी देने के लिए श्रोता साथियों, हमें आज ही पेड़ लगाने हैं और उन्हें बचाने का संकल्प लेना होगा। जब भी हम किसी पेड़ की छाया में बैठे उसकी ठंडी हवा का आनंद लें या उसके फल खाएं, तब ये याद रखें श्रोताओं कि वो पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं है बल्कि जीवन का रक्षक है। यदि हम आज एक पेड़ बचाते हैं कशिश, तो वास्तव में हम आने वाले कल को बचाते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि कहा गया है कि हरे भरे पेड़ ही सुरक्षित जीवन का आधार है। इनकी रक्षा में ही हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, आज हम जिस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं वह हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। जागृति जी, यदि हम आज जंगलों को बचाने में असफल रहेंगे साथियों, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारा नैतिक दायित्व यही है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और एक हरित तथा सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। याद रखें श्रोता साथियों, यदि हमें सुरक्षित स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें हरे भरे वनों को तो बचाना ही होगा। जब जंगल मुस्कुराते हैं साथियों तो धरती मुस्कुराती है।
0: जी हाँ।
1: और जब धरती मुस्कुराती है तो मानव जीवन सुरक्षित और समृद्ध बनता है। जागृति जी
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सभी को मिलकर हरियाली बढ़ानी है, पेड़ बचाने हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर स्वच्छ और सुरक्षित संसार उपहार

0: देना है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने बहुत सही बात कही। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, हमने जाना आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन कितना जरूरी है। तो बातें तो बहुत सारी हो चुकी है और समय का मान रखना होगा। समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुंद आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुंद आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी श्रोता साथियों के साथ बातचीत रहने वाली है। पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है?
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, प्रकृति और सामुदायिक जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज हम देख रहे हैं अंजलि कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की तलाश में गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये पलायन केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं श्रोताओं, बल्कि गाँव की शक्ति, संसाधनों और सामाजिक संरचना का कमजोर होना भी है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे कि पलायन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बातें इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है पलायन रोकने में गांव की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि गांव का समुचित विकास किया जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो पलायन को काफी हद तक हम रोक सकते हैं।
1: जी
0: इसीलिए पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है उसी को लेकर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पलायन आखिरकार क्या है और क्यों होता है। तो श्रोता साथियों, जब लोग अपने गांव या क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने या काम करने जाते हैं तो उसे पलायन कहा जाता है। भारत में अधिकांश पलायन गाँव से शहरों की ओर होता है। पलायन के कई कारण है, जिसमें रोजगार की कमी, कृषि से घटती आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक असमानता और आधुनिक जीवन की चाह लोगों को गांव छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब गांव में श्रोता साथियों व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और आय का साधन नहीं मिलता है तो वह मजबूरी में शहर की ओर जाता है। इसलिए समस्या का समाधान लोगों को रोकने में नहीं बल्कि गांव को सक्षम बनाने में है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सम्मान हमें जहाँ मिलेगा वहीं इंसान भी बसता है। जैसे कि पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार की कमी होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि गांव में रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे तो लोग अपने परिवार और समाज को छोड़कर बाहर भी नहीं जाएंगे। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें खेती के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं अंजलि कि मनरेगा जैसी योजनाएं भी ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से न केवल आय बढ़ती है बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि रोजगार जब गांव में आएंगे तो पलायन खुद ही रुक जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के अधिकांश ग्रामीण परिवार जो है वो खेती पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती लागत और घटती आय के कारण किसान जो है वो खेती से विमुख हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आधुनिक खेती में हमें जैविक खेती, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करनी होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। और यदि खेत से जुड़ी जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वो गांव में स्थापित हो जाए तो स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। कहना चाहेंगे कि कृषि को लाभकारी बनाना जागृति जी पलायन रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को मैं कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग और विकास बहुत जरूरी है। जैसे कि हर गांव में कुछ न कुछ विशेष संसाधन होते हैं, कहीं वन संपदा है, कहीं खनिज है, कहीं हस्तशिल्प और कहीं पर्यटन की संभावना है। यदि इन संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उचित उपयोग किया जाए तो गांव में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे लोग अपने क्षेत्र में रहकर ही प्रगति कर सकते हैं और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।
1: जी
0: तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय संसाधन अगर हमारे आधार बनेंगे तभी हम गाँव को सशक्त और तैयार कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, और इसी के साथ शिक्षा और कौशल विकास भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अच्छी शिक्षा और कौशल विकास की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। श्रोता साथियों, युवा बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुक कर जाते हैं। यदि जागृति जी गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, डिजिटल शिक्षा हो और कौशल प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध हो तो युवाओं को अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इससे युवा जो है वो कौशल विकास के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी प्रेरित हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा और कौशल हो विस्तार तभी बनेगा गांव आत्मनिर्भर और मजबूत आधार।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है, तो ये बातें निरंतर हम ऐसे ही करते रहेंगे हमारे श्रोता साथियों से।
1: जी जी।
0: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि पलायन क्या होता है, क्यों होता है और पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसी के साथ जागृति जी अब आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की। तो हम देखते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ढेर सारी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर गांवों में ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो तो ग्रामीण लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और वो समय पर इलाज करवा पाए। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत से ग्रामीण जो लोग हैं वो इसी कारण से शहर में रहना पसंद करते हैं कि वहाँ पर कम से कम सुविधाएं तो हैं, जैसे तैसे हम हमारा जीवन काट लेंगे लेकिन पर्याप्त तो सुविधा मिलने से इंसान की जान बच जाएगी। तो ऐसे में हमें गांवों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी तो लोग जो है वो शहरों पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं और युवाओं का भी सशक्तिकरण जरूरी है। जैसे कि महिलाएं और युवा गांव के विकास की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग, हस्तशिल्प और स्वरोजगार योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और स्थानीय रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जब गाँव का युवा गाँव में ही अवसर देखेगा तब पलायन कम होगा। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायतें गांव के विकास की धुरी है। यदि पंचायतें योजनाओं का सही क्रियान्वयन करेंगी और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी तो गांवों का तेजी से विकास हो सकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता के माध्यम से पंचायतें पलायन रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आज का युग तकनीक युग है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों की इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को नई दिशा दे सकती है। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण युवा घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नई संभावनाओं से जुड़ सकते हैं। कहना चाहेंगे जागृति जी कि तकनीक गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का सशक्त माध्यम है। गांव की सबसे बड़ी ताकत उसका सामुदायिक जीवन होता है। जब लोग मिलकर विकास कार्यों में भाग लेते हैं श्रोता साथियों तो समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से होता है। सामूहिक प्रयास, सहयोग और सामाजिक एकता गांव को मजबूत बनाती है और यही भावना पलायन को रोकने में सहायक होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा भी बहुत जरूरी है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि पलायन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय आत्मनिर्भर गाँव है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा गाँव जहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल, ऊर्जा और विकास के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाए। आत्मनिर्भर गांव केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता अंजलि, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होता है।
0: जी जी।
1: और यही सच्चे स्वराज की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती भी है। इसे रोकने के लिए गांवों को मजबूत, आत्मनिर्भर और अवसरों से परिपूर्ण बनना होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी, कृषि विकास और स्थानीय संसाधनों के उचित उपयोग से श्रोता साथियों गाँव को विकास का केंद्र बनाया जा सकता है। जब गांव में ही सम्मानजनक जीवन, रोजगार और विकास के अवसर उपलब्ध होंगे जागृति जी, तब लोगों को शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मजबूत गाँव ही मजबूत भारत का आधार है, इसलिए पलायन को रोकने की शुरुआत गाँवों को सशक्त बनाने से ही हो पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने की कार्यशाला है। यदि गांव समृद्ध होंगे तो शहरों पर बोझ कम होगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी और सच्चे अर्थों में स्वराज का सपना भी साकार होगा। इसीलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाएं जहां कोई मजबूरी में पलायन न करे बल्कि अपने गांव में रहकर गर्व के साथ विकास की नई कहानी लिखे।
0: जी जी।
1: पलायन को केवल लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की घटना मान लेना उचित नहीं होगा। ये उस स्थिति का संकेत है अंजलि, जब किसी व्यक्ति को अपने ही गांव में अवसर, सुरक्षा और भविष्य दिखाई नहीं देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए पलायन रोकने का अर्थ लोगों को रोकना नहीं बल्कि गाँव को इतना सक्षम बनाना है श्रोताओं कि वहाँ रहने वाला व्यक्ति अपने सपनों को अपने ही परिवेश में पूरा कर सके।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन की दिशा बदलने के लिए हमेशा बड़ी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। कई बार बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों, दृष्टिकोण और दैनिक आदतों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम समस्याओं को अवसर देना सीखते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और अपने भीतर की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तब धीरे धीरे जीवन नई राह पकड़ने लगता है जो कठिन रास्तों को भी आसान बना देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए यदि हम बेहतर जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बदलती हुई सोच ही नए सपने, नए प्रयासों और नई सफलताओं का आधार बनती है।
1: बिल्कुल अंजलि, बस आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों को समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में देखेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
0: जी जी।
1: जिस दिन गांव का युवा ये महसूस करेगा कि उसका भविष्य उसके अपने गांव में सुरक्षित और उज्जवल है, उसी दिन पलायन की समस्या स्वतः ही कम होने लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, हमें ऐसे गांवों के निर्माण का संकल्प लेना है जहां खेतों में हरियाली हो, घरों में खुशहाली हो, युवाओं के हाथों में काम हो और लोगों के मन में अपने गांव के प्रति गर्व हो। यही वो मार्ग है जो संतुलित विकास, सामाजिक समृद्धि और सच्चे स्वराज की ओर ले जाता है।
0: जी,
1: गांव केवल बसावट नहीं भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है, और जब गांव आगे बढ़ेंगे अंजलि, तब विकास के रास्ते हर घर तक पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि पलायन क्या है, क्यों होता है और इसका प्रभाव हमें कैसे देखने को मिलता है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: यही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है,
0: बिल्कुल
1: सावधानी उसके सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो व्यक्ति आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है श्रोता साथियों, वह कल दवाइयों पर नहीं बल्कि खुशियों पर खर्च करता है,
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि हमारी शुरुआती पंक्तियों से ही आप जान गए होंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि आज की सावधानी कल का बेहतर स्वास्थ्य जीवन। श्रोता साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी अचानक आती है, लेकिन सच यह है कि अधिकांश बीमारियां हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों का परिणाम होती है,
0: बिल्कुल।
1: वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रख सकती है।
0: जी जी,
1: इसलिए कहा जाता है कशिश के रोकथाम इलाज से बेहतर होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाए पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज की सावधानी, कल का बेहतर स्वस्थ जीवन। श्रोता साथियों, अगर स्वास्थ्य के वास्तविक अर्थ को हम जाने तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं होता अंजलि जी, बल्कि इसका वास्तव में अर्थ है स्वस्थ वही व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हो। दोस्तों, यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव से भरा हुआ है तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उसी तरह यदि मन खुश है लेकिन शरीर लगातार बीमार रहता है अंजलि जी, तब भी हम कह सकते हैं कि जीवन का आनंद अधूरा रह जाता है।
1: जी जी, यही कशिश अब बात आती है कि आज की छोटी सावधानियां क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारी रोजमर्रा की कई आदतें भविष्य का स्वास्थ्य तय करती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, साफ सफाई रखना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, समय पर सोना, पर्याप्त नींद लेना, साथ ही तंबाकू, शराब और अन्य जो नशे होते हैं उनसे दूर रहना।
0: बिल्कुल।
1: समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं कशिश, लेकिन इनका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत गहरा होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम लगातार शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि अनेक समस्याएं जन्म लेने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव, कमजोरी, पाचन संबंधित समस्याएं। श्रोता साथियों, इनमें से अधिक बीमारियां अचानक नहीं आती बल्कि वर्षों की गलत आदतों का परिणाम होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। अब यही अगर इसी के आगे हम बात करें संतुलित भोजन के महत्व की, तो साथियों, हमारा भोजन ही हमारी दवा भी बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और बीमारी का कारण भी। देखते हैं कि थाली में जितनी विविधता होगी अंजलि जी, शरीर को उतने ही आवश्यक पोषक तत्व मिल पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को भोजन में कुछ चीजें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, मोटे अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, पर्याप्त पानी, और साथ ही दोस्तों जंक फूड, अत्यधिक तेल, नमक और चीनी का सेवन आपको सीमित रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर संतुलित भोजन का महत्व होता है, और जो कुछ जरूरी चीजें होती हैं वो हमें अपने आहार में जरूर शामिल करनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं साथियों।
1: बिल्कुल। यही कशिश अब बात आती है कि रोज केवल 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां कई बीमारियों से बच सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है, हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रित रहता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जरूरी नहीं कि महंगे जिम जाएं, तेज चलना, योग, साइकिल चलाना, घर के काम भी अच्छे व्यायाम हो सकते हैं। इसी के साथ स्वच्छता ही सुरक्षा है। यानी कि कशिश, कई संक्रामक बीमारियां केवल साफ सफाई अपनाकर रोकी जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि हाथ धोना, साफ पानी पीना, भोजन ढककर रखना, घर में आसपास सफाई रखना, मच्छरों से बचाव, ये आदतें श्रोता साथियों पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लापरवाही के चलते इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने में ये सोच लेते हैं कि इससे हो ही क्या जाएगा, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाही हमारी आगे चलकर हमारी आदत बन जाती है और आदतें बहुत गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां कर सकती हैं। इसलिए स्वच्छता ही सुरक्षा है, इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कर रहे हैं हमारे श्रोता साथियों से हमारे कल के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान रखने की।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आज की भाग दौड़ में मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य होता है। इसलिए हमें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी बात साझा करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी है, योग ध्यान करना है, मोबाइल का सीमित प्रयोग करना है। इसी के साथ दोस्तों, खुश मन स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव अभी के समय की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है स्वास्थ्य संबंधित।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम बच्चों को अच्छी आदतें बचपन से ही सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में आप उन्हें सिखाएं हाथ धोना, पौष्टिक भोजन खाना, खेलकूद में शामिल होना, समय पर सोना और मोबाइल कम इस्तेमाल करना। क्योंकि अंजलि जी, स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ भारत का भविष्य होते हैं।
0: जी जी।
1: वहीं अगर बात की जाए महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो देखा जाता है कि महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अक्सर भूल जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को ये समझना चाहिए कि वह संतुलित भोजन का सेवन करें, नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य की जांच कराती रहें, पर्याप्त आराम की भी उन्हें जरूरत है, और साथ ही आयरन और कैल्शियम युक्त आहार उन्हें शामिल करना चाहिए।
0: जी जी।
1: साथ ही उनको अंजलि जी, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है।
0: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है बुजुर्गों की देखभाल की। तो श्रोता साथियों, बढ़ती उम्र में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन, समय पर दवा और परिवार का भावनात्मक सहयोग। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि मौसम बदलने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी।
0: इसलिए उबला और स्वच्छ पानी पिए, ताजा भोजन करें, पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और साथ ही बुखार होने पर स्वयं दवाई न लें बल्कि डॉक्टर की सलाह से हमें दवाई लेनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: यदि हम बीमारियों से बचना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो पूरे समाज को मिलकर कुछ कार्यों को करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखनी होगी, टीकाकरण पूरा कराना होगा, स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी फैलानी होगी, अफवाहों से बचना होगा और जरूरतमंद की मदद करनी होगी। जब पूरा समाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा कशिश, तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी न धन है, न पद है और न ही प्रसिद्धि। सबसे बड़ी पूंजी श्रोता साथियों हमारा स्वास्थ्य है।
0: बिल्कुल।
1: यदि शरीर स्वस्थ है तो कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है, और सपनों को भी साकार करने की शक्ति बनी रहती है अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की रक्षा किसी एक दिन का अभियान नहीं है बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। ऐसे में हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को जरूर अपनाएंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे साथियों, और साथ ही संतुलित भोजन करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अपने परिवार और समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएंगे अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम अपना कार्य समय पर कर पाते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य ही हमारा साथ नहीं देता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो कार्य है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंचकर हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाए, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसे हर दिन अपने अच्छे निर्णयों और अनुशासित आदतों से मजबूत बनाना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने भविष्य को आज की सोच, आज के व्यवहार, आज की सावधानियों से ही आकार देते हैं। जब हम समय पर भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, स्वच्छता का पालन करते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तब केवल बीमारियों से ही नहीं बचते बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी स्वास्थ्यप्रद बातें रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे दोस्तों को जरूर पसंद भी आई होंगी।
0: जी जी।
1: क्योंकि अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाई ने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: हो वे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे कि साथियों, गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, तो कभी दुख होता है और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिरकर उठना सिखाती है। और दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है, या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है, तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों, तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती, जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, और एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों, हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहां से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना

चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है दोस्तों। जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है साथियों। इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: तके निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन, हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुके जाएंगा। हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा। ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है विश्व खेल पत्रकार दिवस को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी पदक जीतता है, कोई टीम इतिहास रचती है, कोई नया रिकॉर्ड बनता है या किसी खिलाड़ी का संघर्ष दुनिया के सामने आता है, तब उसके पीछे खेल पत्रकारों की मेहनत भी छिपी होती है।
0: हाँ?
1: खेल पत्रकार केवल समाचार नहीं लिखते बल्कि वे खिलाड़ियों की मेहनत, उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनकी उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें याद दिलाता है कि खेलों की दुनिया केवल मैदान तक सीमित नहीं होती है। मैदान से लेकर दर्शकों तक, खिलाड़ियों से लेकर समाज तक, खेलों की हर कहानी को जोड़ने का काम खेल पत्रकार करते हैं। धूप, बारिश, ठंड और कठिन परिस्थितियों में भी खेल प्रतियोगिता को कवर करते हैं ताकि हम घर बैठे हर पल की जानकारी प्राप्त कर सके।
0: जी हाँ।
1: केवल जीत का प्रश्न नहीं, जश्न नहीं दिखाते बल्कि हार के बाद खिलाड़ियों के साहस, संघर्ष और वापसी की कहानी को भी लोगों तक पहुंचाते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें जरूर रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा श्रोता साथियों, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, संघर्ष, आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम की भावना और राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है साथियों।
1: जी हां,
0: किसी भी खिलाड़ी की मेहनत, किसी प्रतियोगिता का रोमांच और खेल जगत की उपलब्धियां श्रोता साथियों तभी आम लोगों तक पहुंचती ही जब उन्हें सही और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने वाली पत्रकारिता हो।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि खेल पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है साथियों जो खेलों की दुनिया को समाज से जोड़ता है। इसी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष श्रोता साथियों 2 जुलाई यानी कि आज ही के दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें याद दिलाता है कि खेलों की दुनिया केवल मैदानों तक सीमित नहीं होती। मैदान से लेकर दर्शकों तक, खिलाड़ियों से लेकर समाज तक, खेलों की हर कहानी को जोड़ने का काम खेल पत्रकार करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे धूप, बारिश, ठंड और कठिन परिस्थितियों में भी खेल प्रतियोगिता को कवर करते ताकि हम घर बैठे हर पल की जानकारी प्राप्त कर सकें। वे केवल जीत का जश्न नहीं दिखाते बल्कि हार के बाद खिलाड़ियों के साहस, संघर्ष और वापसी की कहानी भी लोगों तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में श्रोता साथियों खेल पत्रकारिता केवल अखबार तक सीमित नहीं रह गई है। अब टीवी, रेडियो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से हर पल खेलों की जानकारी हमारे पास पहुंचती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इतनी तेजी के दौर में भी सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छा खेल पत्रकार वही होता है जो किसी खिलाड़ी या टीम का पक्ष लेने के बजाय निपक्ष होकर सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। उसका उद्देश्य केवल खबर देना नहीं होता बल्कि खेल भावना, अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी जैसे मूल्यों को भी समाज में बढ़ावा देना होता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि खेल पत्रकारिता युवकों को प्रेरित करने का एक मजबूत माध्यम है। जब किसी छोटे गाँव का खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करता है और उसकी कहानी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हजारों दूसरे बच्चे भी खेलों की ओर प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह दिवस उन पत्रकारों के लिए परिश्रम और निष्पक्षता को समर्पित है श्रोता साथियों और उनको सम्मान देने के लिए ही जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी घटनाओं को जनता तक पहुँचाते हैं। खेल पत्रकार न केवल मंचों का वितरण करते हैं साथियों बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी सफलता, खेल नीतियों, खेल संस्कृति और खेलों से जुड़े सामाजिक पहलुओं को सामने लाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग से नई प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण भी बनता है।
1: बिल्कुल मनीषा, खेल पत्रकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों के साथ साथ खेलों से जुड़ी समस्याओं को भी सामने लाते हैं। चाहे खिलाड़ियों को सुविधाओं की कमी हो, प्रशिक्षण में कठिनाई हो या किसी खेल को पर्याप्त पहचान न मिल रही हो तो खेल पत्रकार इन मुद्दों को समाज और सरकार तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आज भारत में खेलों के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है।
0: जी हाँ,
1: क्रिकेट के अलावा हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती और कई सारे ऐसे खेल हैं जो भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: इन सभी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में खेल पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सामुदायिक रेडियो भी खेल पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। गाँव और कस्बों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं, स्थानीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों और ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान दिलाने का कार्य सामुदायिक प्रभाव से किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: स्थानीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण भी बन पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी भी देता है। इससे खेलों के प्रति श्रोता साथियों जागरूकता बढ़ती है। खिलाड़ी के संघर्ष, सफलता की कहानियां युवाओं को आत्मविश्वास देती है। साथ ही हम देखते हैं कि खेल पत्रकारिता देश की खेल नीतियों, सुविधाओं और चुनौतियों को भी सामने लाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब किसी खिलाड़ी को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते हैं, खेल अनियमित होते हैं श्रोता साथियों, तो पत्रकारिता उन्हें समाज के सामने लाती है। इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे खेल पत्रकारिता का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि खेल पत्रकारिता केवल बड़े शहरों या बड़े खेल आयोजकों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों के उभरते खिलाड़ियों, स्कूल स्तर के प्रतियोगिताओं और स्थानीय खेल परंपराओं को भी समान महत्व मिले। साथ ही हमें खेल पत्रकारों के कार्य का सम्मान करना चाहिए। उनकी मेहनत के कारण ही हम खेलों के हर रोमांचक पल, हर रिकॉर्ड, हर जीत और हर संघर्ष से जुड़े रहते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम खेलों का सम्मान करेंगे, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे और सच्ची, सकारात्मक और निष्पक्ष खेल पत्रकारिता को समर्थन देंगे। खेल केवल श्रोता साथियों मनोरंजन नहीं है, बल्कि अनुशासन, समर्पण, संघर्ष और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और इन मूल्यों को समाज तक पहुँचाने का कार्य खेल पत्रकार पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। हम खेलों को बढ़ावा दें, स्थानीय प्रतिभाओं को पहचाने और खेल पत्रकारिता की निष्पक्षता और ईमानदारी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। उनके संघर्ष, त्याग, मेहनत की कहानियां समाज तक पहुंचाने का कार्य खेल पत्रकार करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन प्रेरणादायक कहानियों से अनेक युवा खेलों में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, हमें यह संदेश मिलता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम और धैर्य से भी प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, खेल पत्रकारिता का अर्थ केवल स्कोर बताना नहीं होता है, इसके पीछे गहरी समझ, निष्पक्ष सोच और निरंतर मेहनत होती है। एक पत्रकार को खेल के नियमों की जानकारी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण और घटनाओं की सच्चाई को समझकर लोगों तक पहुंचाना होता है। यही कारण है कि अच्छी खेल पत्रकारिता खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज खेलों की दुनिया पहले से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। हर दिन मनीषा देश और दुनिया में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। प्रतियोगिताओं की खबरें, खिलाड़ियों के इंटरव्यू, उनके अभ्यास की झलक, उनकी चुनौतियां और उनके संघर्ष लोगों तक पहुंचाने का कार्य खेल पत्रकार करते हैं।
1: जी हाँ।
0: केवल मैदान पर होने वाली घटनाओं को नहीं दिखाते, बल्कि उन कहानियों को भी सामने लाते हैं जो किसी खिलाड़ी को महान बनाती है। हम अक्सर मनीषा किसी खिलाड़ी की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताएं और आर्थिक कठिनाइयां और लगातार किए गए संघर्ष को जानने का अवसर हमें खेल पत्रकारिताओं की वजह से ही मिल पाता है।
1: जी हाँ।
0: यही कहानी लाखों युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल पत्रकारिता केवल बड़े टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहती। यह विद्यालय, महाविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं को भी महत्व देती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब स्थानीय खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं को समाचार के स्थान पर श्रोता साथियों ने समझ मिलती है, तो नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है।
0: जी जी।
1: और हम देखते हैं कि समाज में खेल संस्कृति भी मजबूत होती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण खेल पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब लोग मोबाइल फोन पर लाइव स्कोर, वीडियो विश्लेषण और समाचार तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता ने समाचार को श्रोता साथियों गति दी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। पत्रकारों को तथ्य, जांच, विश्लेषण और निष्पक्षता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम देखते हैं कि गलत जानकारी है वो लोगों तक न पहुंच पाए।
0: जी हाँ, आज डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर कई बार बिना पुष्टि की गई तेजी से फैल जाती है। ऐसे समय में एक जिम्मेदार खेल पत्रकार का कर्तव्य होता है श्रोता साथियों कि वह केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी ही लोगों तक पहुंचाए। सही जानकारी देना ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी पहचान है। भारत जैसा विशाल देश, कह सकते हैं कि खेल प्रतिभाओं को कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे गांवों और कस्बों से लेकर अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को पहचान दिलाने में मीडिया और विशेष रूप से खेल पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी ग्रामीण खिलाड़ी की सफलता की कहानी प्रकाशित होती है, तब वह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रखती, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। सामुदायिक रेडियो भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं, विद्यालयों की खेल गतिविधियों और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं और पारंपरिक खेलों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे न केवल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है, बल्कि समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच भी विकसित हो पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करता है, खेल पत्रकार है वो उनकी उपलब्धियों को देश तक पहुंचाते हैं। इससे नागरिकों में गर्व और उत्साह की भावना है वो श्रोता साथी विकसित होती है। ऐसी खबरें हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं को भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्र में खेल की भावनाओं को भी मजबूत करती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, आगे भी ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी विश्व खेल पत्रकार दिवस को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि एक सफल खेल पत्रकार बनने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, उसे निष्पक्षता, ईमानदारी, धैर्यवान और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए साथियों।
1: जी हाँ।
0: उसकी भाषा सरल हो, प्रभावी होनी चाहिए, ताकि हर आयु वर्ग का व्यक्ति ही वो उनके समाचारों को समझ सके। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि तथ्य जांच, समय की पाबंदी, विश्लेषण क्षमता और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि खेल समाज में एकता, अनुशासन, सहयोग और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं की भावनाओं को विकसित करते हैं। खेल पत्रकार इन मूल्यों को आसानी से रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब श्रोता साथियों लोग खिलाड़ी के संघर्ष और सफलताओं की कहानियों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनमें सकारात्मक सोच और मेहनत करने की प्रेरणा है वो उत्पन्न होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पाए कि खेल पत्रकारिता क्या है और इसका क्या महत्व है। यही बात करें पत्रकारिता के महत्व की, तो श्रोता साथियों सुबह उठते ही हम समाचार पढ़ते हैं, टीवी पर खबरें देखते हैं, मोबाइल पर अपडेट प्राप्त करते हैं या रेडियो पर देश दुनिया की जानकारी सुनते हैं। यह सब हमें सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इसके पीछे हजारों पत्रकारों की मेहनत, ईमानदारी, जोखिम और समर्पण छिपा होता है। पत्रकारिता केवल समाचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक, शिक्षित, जिम्मेदार बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह लोकतंत्र की आत्मा है और जनता और शासन के बीच एक मजबूत पुल का कार्य भी करती है।
0: जी हाँ।
1: समाज में पत्रकारिता न हो तो आम नागरिक जो है वो सही जानकारी से वंचित रह जाएगा और अफवाहें सत्य का स्थान लेने लगेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं मनीषा कि पत्रकार का पहला कर्तव्य सत्य की सोच करना और उसे निष्पक्ष रूप से समाज के सामने रखना होता है।
0: जी
1: पत्रकार
0: हाँ।
1: किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार का नहीं, बल्कि सत्य और समाज का पक्षधर होता है।
0: बिल्कुल।
1: उसकी कलम और उसकी आवाज लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का माध्यम बनती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है साथियों, बल्कि उन समर्पित पत्रकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है साथियों, जो खेल जगत की हर धड़कन को समाज तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनकी निष्पक्षता और जिम्मेदारी पत्रकार को खिलाड़ियों को पहचान दिलाती है, खेल संस्कृति को मजबूत बनाती है, साथ ही युवाओं को भी प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता का महत्व केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, गाँव और छोटे कस्बों में भी पत्रकार लोगों की समस्याओं, उपलब्धियों और जरूरतों को प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई बार किसी गांव में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या वर्षों तक अनदेखी रह जाती है, लेकिन
0: हाँ।
1: जब पत्रकार उस मुद्दे को उठाते हैं तो संबंधित विभाग कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पत्रकारिता समाज को केवल समस्याओं से परिचित नहीं कराती, बल्कि समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ाती है।
0: जी
1: जब
0: हाँ।
1: किसी स्थान पर अच्छा कार्य होता है, कोई किसान नई तकनीक अपना कर सफल होता है, कोई महिला आत्मनिर्भर बनती है, तो कोई युवा अपने प्रयासों से समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, तब पत्रकारिता उन सकारात्मक कहानियों को लोगों तक पहुंचाकर प्रेरणा का वातावरण तैयार करती है। आज पत्रकारिता के अनेक माध्यम हैं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, वेबसाइट और सोशल मीडिया। सूचना पहुंचाने के साथ सूचना पहुंचाने के जो साधन है वो बदल गए हैं, लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जो है वो आज भी वही है, सत्य, निष्पक्षता और जनहित।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पत्रकार और खिलाड़ी का संबंध ही वो विश्वास पर आधारित होता है। खिलाड़ी अक्सर अपने अनुभव, चुनौती और भविष्य की योजनाओं को पत्रकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए पत्रकार का दायित्व है कि वह किसी भी बातचीत के संदर्भ में हटकर प्रस्तुत न करे श्रोता साथियों, खिलाड़ी के विचारों को सही रूप से लोगों तक पहुँचाए। विश्वास की यही भावना खेल पत्रिता की गुणवत्ता है, उसको मजबूत करती है। आज हम देखते हैं कि खेल पत्रकारिता में महिलाओं की भागीदारी है वो भी बढ़ रही है। हम देखते हैं कि महिलाएं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और अन्य जो खेल है उनमें रिपोर्टिंग में अपना उत्कर्ष दे रही हैं। उनकी उपलब्धियों ने खेल पत्रकारिता को अधिक विविध और संवेदनशील और व्यापक बनाया है। हम देखते हैं कि इससे नई पीढ़ी की युवाएं ही नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं उनके क्षेत्र में भी करियर बनाने की एक प्रेरणा बन सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, सामुदायिक रेडियो भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह स्थानीय लोगों की आवाज बनता है, गांव की समस्या, किसानों की जानकारी, महिलाओं का सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित संदेश जो है वो स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का मजबूत माध्यम बन रही है।
0: जी हाँ।
1: पत्रकारिता श्रोता साथियों, लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह सरकार की नीतियों पर निगरानी रखती है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। जब कोई गलत कार्य करता है, भ्रष्टाचार सामने आता है या किसी के अधिकारों का हनन होता है, तब पत्रकारिता जो है वो सच को उजागर करने का साहस दिखाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से विश्व खेल पत्रकार दिवस को चली रही है और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम पत्रकारिता के महत्व को जान पा रहे थे, श्रोता साथियों, आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर कोई कुछ ही सेकंड में कोई भी सूचना साझा कर सकता है। ऐसे समय में फर्जी खबरें भी तेजी से फैलने लगी हैं, इसलिए लोगों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि वे किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास न करें, बल्कि उसकी सत्यता की जाँच करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। पत्रकारिता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जन जागरूकता। स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, पर्यावरण संरक्षण, मतदान, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्रकार केवल घटनाओं की गवाह नहीं होते, बल्कि वे इतिहास के दस्तावेज तैयार करते हैं। यानी कि आने वाली पीढ़ियां किसी भी समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को पत्रकारिता के माध्यम से समझती है। आज आवश्यकता ऐसी पत्रकारिता की है जो टीआरपी, सनसनी और अफवाहों के ऊपर उठकर समाज हित को प्राथमिकता दे। ऐसी पत्रकारिता जो लोगों को जोड़ने का काम करे, न कि बांटने का, जो सवाल पूछे लेकिन जिम्मेदारी के साथ, जो आलोचना करे लेकिन तथ्यों के आधार पर, जो उपलब्धियों की सराहना भी करे और कमियों की ओर ध्यान भी दिलाए। युवाओं के लिए पत्रकारिता केवल एक करियर नहीं है, बल्कि समाज सेवा का भी एक माध्यम हो सकता है। यदि युवा ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ

0: पत्रकारिता करते हैं तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व है सत्य को सामने लाना। कई बार श्रोता साथियों ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य लोगों की नजर से दूर रहती हैं। पत्रकार अपने साहस, मेहनत और ईमानदारी और उन तथ्यों को उजागर करते हैं। इससे हम देखते हैं कि समाज में पारदर्शिता बढ़ती है और गलत कार्यों पर भी रोक लगने में मदद मिलती है। हालांकि अंजलि जी, हम देखते हैं कि यह कार्य आसान नहीं होता है। कई बार पत्रकारों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, फिर भी वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं कि पत्रकारिता केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती है बल्कि विभिन्न विषयों पर चर्चा, विचार और विमर्श करने के अवसर प्रदान करती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, हम सभी को पत्रकारों के कार्यों का सम्मान करना चाहिए। कई पत्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, युद्ध और दुर्घटनाओं के समय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं और उनका यह समर्पण समाज के लिए बहुत ही मूल्यवान है।
1: जी हाँ।
0: पत्रकारिता केवल अखबारों तक सीमित नहीं है, यह खबरों का संसार है, यह विश्व की जिम्मेदारी और जनसेवा का माध्यम भी है। एक मजबूत पत्रकारिता ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। श्रोता साथियों, जब समाचार निष्पक्षित होंगे और जानकारी सत्य होगी और पत्रकार सामाजिक हित को सर्वोपरि रखेंगे तभी नागरिक जो है वो सही निर्णय ले सकेगा और देश के विकास के मार्ग में आगे बढ़ेगा। हम सभी को ये बात अपने मन में रखनी होगी कि हम केवल सत्य और प्रमाणित समाचारों पर ही विश्वास करें, अफवाहों से बचेंगे, जिम्मेदार मीडिया का सम्मान करेंगे और ऐसी पत्रकारिता का समर्थन करेंगे जो समाज में जागरूकता, एकता, न्याय और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पत्रकारिता हमें केवल यह नहीं बताती कि दुनिया में क्या चल रहा है बल्कि यह सिखाती है श्रोता साथियों कि समाज की भलाई के लिए हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्ष और जनहित के प्रति समर्पित होकर पत्रकारिताओं की पत्रकारी उनका सम्मान करना चाहिए, साथ ही मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। श्रोता साथियों, जब पत्रकारिता अपने आदर्शों पर अड़ित रहते हैं तब लोकतंत्र है वो भी मजबूत होता है।
0: जी हाँ,
1: समाज अधिक जागरूक बनता है और राष्ट्र के विकास में और आत्मविश्वास की शक्ति है वो भी बढ़ती है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक जागरूक समाज की पहचान केवल उसकी शिक्षा या विकास से नहीं होती है बल्कि श्रोता साथियों इस बात से होती है कि वहाँ सत्य को कितना महत्व दिया जाता है। पत्रकारिता उसे सत्य की खोज और उसकी निष्पक्ष प्रस्तुति का माध्यम है। यह लोगों की आवाज को शक्ति देती है, जनहित के मुद्दों को सामने लाती है और समाज को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। आज जब सूचनाओं की बाढ़ में सच और झूठ के बीच अंतर करना कठिन होता जा रहा है मनीषा, तब जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसलिए हमें भी जागरूक नागरिक बनते हुए खबर को समझदारी से परखना चाहिए, अफवाहों से दूर रहना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: हम ऐसी पत्रकारिता का सम्मान करें जो निडर हो, निष्पक्ष हो, संवेदनशील हो और समाज के हर वर्ग की आवाज को सम्मान महत्व दे, क्योंकि जब पत्रकारिता मजबूत होती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है, जब लोकतंत्र मजबूत होता है तब समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास भी मजबूत होता है और यही एक जागरूक, उत्तरदायी और प्रगतिशील राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, अगर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।
1: साथी श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी के सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है। साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि फरमाइशें आने का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूंगी पहली फरमाइश की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है राहुल नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है बोल रहा था बोल, गीत के बोल भी यही है, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया। फरमाइश करता जुड़ा है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना गुणा, प्रय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे जी। गाजीबाद से जुड़ना चाह रहे शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी, और भी दोस्त नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं, महाराज पितरन कुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी जी। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे बोड़खेड़ा पित्रा मल से हैं, विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुड़त जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पापिया, पप्पी भाटिया, नवनीत भाटिया, अजित कसाना, माया ऋतिक और देवी आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं, बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत दोस्तों आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राजा बाबू। गीत के बोल हैं, याद सताए तेरी नींद चुराई। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे लसनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, पंडरपुर से जुड़ना चाह रहे जाकिल मुलानी, सुमया सलमा, मुमताज, दिलसाद नसीर, बानो बिपाशा मुलानी जी, मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। बागपत से जुड़ना चाह रहे आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्कान, सारी फरीद, सादिक अली खान। पंडरपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। फर्रुखाबाद यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे चर्च रोड पूसद से डॉक्टर आर के गणोजे, सौभाग्यवती रत्नमला गणोजे और सौभाग्यवती रूपाली देवरे जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सुशीला बाई जी, प्रभाकर देवरे, श्लोक देवरे, कान्हाजी देवरे, कमलदीप दीपक गणोजी जी और वनमाला विजय गणोजी, नंदा अभय गणोजी, हेमलता सहदेव लोहकपुरे जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ रहे हैं एटा उत्तर प्रदेश से नसीब हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, नफ़ यसफ अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, रिहत और वारसी अब्बासी जी, फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन, सीता और गीता कश्मीर से जुड़ रहे हैं। कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, ननिनी जंगेल, अमित जंगेल, शकुन, आरुषिका, औषिका, आदित्य, अंजलि जंगेल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, याद सताए तेरी नींद चुराई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। नवा शहर से जुड़ना जा रहे सुरेंद्र साधु, नीता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। मगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। और भी श्रोता साथी गंजुटवारा से हैं शमशेर कमर राय, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजन खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। आलोट रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी। छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली नीरा, अमित वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है श्रोता साथियों गेडिये झारखंड से आया है। फिल्म का नाम है ज्वेल थीम। गीत के बोल हैं, होठों पे ऐसी बात में छुपा के चली आई। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन अनजान, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मेफर नवाज, बेबी चाहत। इसी बीच और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, राहट गांव अमरावती से श्याम कीटे, वरना कीटे, भाविक कीटे, सानिका कीटे। महाराष्ट्र से हैं बरुण लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़ जी। साथियों, मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाहे शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, सप्पल धाड़े, अजय खिरोड़कर। दादरीगेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, गणेश अविका जी। पुनावले से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शहसा सोनवाने जी। गंजुडवारा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद याशिन आशमी, नाजमा बेगम आशमी, तौसीफ आशमी, तैमूर आशमी, कलीम अंसारी जी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर जी, तनुजी देवांगन, निशांत देवांगन जी। साथियों, श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, जले ऋषिकेश दले, जीविका दले, सनिका दले। पुनावलेपुरे से अजय सोनानी, करिश्मा अविका, शायसा सोनानी, विशाखा मंगलकर जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये फरमाइश आई है श्रोता साथियों कुरावली से। फिल्म का नाम है कयामत। गीत के बोल हैं, वो लड़की बहुत याद आती है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे छत्तीसगढ़ से, फिनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। बटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। खंडवा से हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। महाराष्ट्र से रुपेश सिंह, महेश प्रगेश, प्रीतेश सिंह, पूरा संगी परिवार। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मलोद से रमेश कुमार जाजोरिया, कितरनी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, वो लड़की बहुत याद आती है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई लोर में चिचड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों मोहरा। गीत के बोल हैं तू चीज पड़ी है मस्त मस्त। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। पानीपत से जुड़ना चाह रहे हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड़ोकुल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुकू सिक्का। आज़ाद नगर अक्सर हरिद्वार से ताज अंसारी, गुलाम शाह भी रहे, महराज शाह। कलानोर से हैं नरेंद्र किरण, नितिन मयंक शर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। सहारनपुर से जुड़ रहे सैयद मसूर, साइना असा, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। जफराबाद से हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवत देशमुख, सानवी कल्पना देशमुख। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिर नायक, नाजिया नाशिर, शाजिद शाहिद। गोविंदपुरा वैद्यनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तू चीज पड़ी है मस्त मस्त।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है राजेंद्र गांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कलंक, गीत के बोल भी यही है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रंजल समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहेरकर जी। अंबाला से जुड़ रहे रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। मड़िया जौनपुर से जुड़ना चाह रहे इरशाद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इशा, नवेद इशा, अजरा तबस्सुम। बनारस से हैं मास्टर अब्दुल, मजीद अंसारी, नौने अंसारी। और भी दोस्त जुड़ रहे बक्सर बिहार से सफीदीन अंसारी खातून, सुरित रमेश साहू। बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनावा दीपा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से एजरा अंसारी, आसमा खातून अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कलंक, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: के करीब हो रही थी दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ बह गई।
2: तुम्हें पता है लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए। मुझे समझ नहीं आता

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुरावली से। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल हैं, पालकी में होके सवार चले रहे हैं। इस गीत की फरमाइश करते हैं साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पर्ल डिकिस्टो, विलेज डिकिस्टो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, अमजल अली, लाडली, निशा और उसके सभी सदस्य। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला मऊ से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी कुतलेश जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ जी गोड़ानी। इस गीत की अनुरोध करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांशी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका, वाणी जी थांदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है धरती, गीत के बोल हैं खुदा भी आसमान से जब। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, चंपाजी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आयुषी श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपन्नम जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला जी, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू वड़तकर जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़ रहे हैं राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है लोफर। गीत के बोल हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजवाज, पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सूरज यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं। सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी यादव और संगीता जी जाधव। इसे भी जुड़ना चाह रहे बरका काना से अफताब ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी और सोहिनी, अफताब मलिक जी। डबकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। एकता कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से। गीत की बोल ही मिलती

इस गीत की अनुरोध करता है हनुमानगढ़ से प्रेम सिंह, सुखवीर काजल, लखवीर कृष्णा, श्रीमती सिंधु जी, प्रवीण शीतल, नवीन और रंगीला जी, निशान अनमोल और चिंकू मिंकू जी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोने, योगिता प्रणाली, पार्थ और हंगोने परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रही हैं। धनुरे तेलीवाला से जुड़ रही निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश जी कड़वासरा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: कभी कभी।
1: दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथ ही। गीत के बोल ही नफरत की दुनिया को छोड़ के। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजुगीता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार वैशाली, प्रियंग प्रज्ञिता वैशाणी, गायत्री और यगेश जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रही सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। भवानीनगर पेठण से जुड़ रहे हैं अरुण, आरती, भाऊ साहेब, गंगा सागर, हर्षवर्धन, अशोक, राशि, कार्तिक और परी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार शरीफ जिला नालंदा से। फिल्म का नाम है वो लम्हे, गीत की बोल है मुझे प्यार है। इस गीत की फरमाइश करता है महेश कुमार और लिसा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, अभीर और वीर चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है बिदायू से इशरत खान, शायरा खान, रिफ्यू खान, सायरिन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, अजम खान, अरवान खान। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, आशिक, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्षी चौहान और डुग्गू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है समस्तीपुर बिहार से। फिल्म का नाम है अनाड़ी, गीत के बोल हैं क्या मौसम आया है। इस गीत की फरमाइश करता है मीरा सिंह श्रीमती ज्योति जी, रोहतक बिहार से जुड़ना चाह रही हैं। सोनम सिंह अनामिका जी रोहतास बिहार से जुड़ रही हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन जी शेंडी। इस गीत की अनुरोध करता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सी उमा सिंह श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, रश्मि, राहुल, सृष्टि बन्नी, सूर्या, आयुष, दिनेश जी। इस गीत की अनुरोध करता है मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, जगमोहन प्रजापति जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही क्या मौसम आया है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
4: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, प्रकृति ने मानव को अनेक अनमोल उपहार दिए जिनमें पेड़ पौधे का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: पेड़ केवल हरियाली का प्रतीक नहीं है बल्कि वे जीवन के आधार है, मानव का अस्तित्व है, पशु पक्षियों का जीवन है, पर्यावरण का संतुलन और पृथ्वी की सुंदरता सभी पेड़ों पर निर्भर है। यदि पेड़ है तो स्वच्छ हवा है, शुद्ध जल है, संतुलित जलवायु है और सुरक्षित भविष्य है। इसीलिए कहना बिल्कुल उचित है कशिश की हरे भरे पेड़ सुरक्षित जीवन की सबसे बड़ी गारंटी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हरे भरे वन और सुरक्षित जीवन को लेकर।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रकृति है वो मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जंगलों और वनों के बिना हम कह सकते हैं कि ही नहीं जा सकती है। साथियों, हरे भरे वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार है, पर्यावरण के रक्षक है और मानव सभ्यता के सच्चे संरक्षक है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, हम देखते हैं कि जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को जीवंत बनाए रखने के लिए वनों की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है, तब हरे भरे वन और सुरक्षित जीवन का विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है।
1: जी हाँ कशिश, आज विकास की दौड़ में जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ रही है और इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में पेड़ों का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, हमें समझना होगा कि पेड़ों की रक्षा करना वास्तव में अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये हम सब मानते हैं कशिश। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्राप्त होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक बड़ा पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हजारों लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि पेड़ न हो कशिश, तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ और अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी लाखों परिवार अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों पर निर्भर है।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन का भी आधार है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथियों सुरक्षित जीवन का आधार भी वनों को माना गया है। हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षित जीवन की बात करते हैं तो उसके पीछे वनों की महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, वन अनेक प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये जलवायु को संतुलित रखते हैं। जैसे कि वन जो है वो तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। जागृति जी, वे वातावरण में नमी बनाए रखते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित

0: संतुलित करते हैं, साथ ही जिन क्षेत्रों में घने वन होते हैं वहाँ मौसम अपेक्षाकृत संतुलित ही रहता है।
1: बिल्कुल।
0: आज श्रोता साथियों, दुनिया में बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही प्रमुख कारण है वनों की कटाई का। यदि वन नष्ट होते रहेंगे तो पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
1: जी हाँ।
0: और फिर हम देखेंगे कि मानव जीवन भी गंभीर खतरों में पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेड़ पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही है। वे वायु प्रदूषण को कम करते हैं, वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं।
0: जी।
1: पेड़ों की हरियाली वातावरण को ठंडा करती है और गर्मी के प्रभाव को कम करती है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देख रहे हैं कशिश कि शहरों में बढ़ती गर्मी और प्रदूषण का मुख्य कारण पेड़ों की कमी है। जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत शुद्ध और स्वस्थ रहता है।
0: जी जी।
1: पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह कार्य करते हैं। पेड़ वर्षा को आकर्षित करने में सहायता करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है जिससे वर्षा का पानी जमीन में समा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और भूजल स्तर बढ़ता है। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ जल स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। पेड़ की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और वर्षा का जल बहकर नष्ट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसका परिणाम सूखे और जल संकट के रूप में सामने आता है। इसीलिए जल संरक्षण और पेड़ संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हरे भरे वन जो हैं वो सुरक्षित जीवन का आधार हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि अब हम जान रहे हैं कि वन किस प्रकार से हर चीज में हर क्षेत्र में हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी आपसे कि हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आपसे ये कहना चाहेंगे कि पेड़ बचाओ, जल बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। हम देखते हैं कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखा, इसके बहुत खतरनाक परिणाम है। वैज्ञानिकों का मानना है कशिश की पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि पेड़ लगाना बहुत आसान है श्रोता साथियों, और अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम जलवायु को बचाने का महाअभियान भी शुरू कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ हम देखते हैं कि वन लाखों प्रकार के पशु पक्षियों, कीट पतंगों और वनस्पतियों का घर है। पृथ्वी की जैव विविधता का बड़ा हिस्सा श्रोता साथियों जंगलों में निवास करता है। यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो अनेक जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना श्रोता साथियों प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जागृति जी, ये कहना गलत नहीं है कि वन संरक्षण केवल पेड़ों की रक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत की रक्षा है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि हरे भरे वन मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वनों से प्राप्त शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। साथ ही श्रोता साथियों, अनेक औषधीय पौधे जो हैं वो वनों में पाए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिनसे जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाई जाती है। जहाँ जागृति जी आज मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, वहाँ वैज्ञानिक शोधों से ये बात पता चली है कि हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य हमारा बेहतर होता है। साथ ही जंगलों की शांति और हरियाली मन को सुकून प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश कि वर्तमान समय में वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं रहा बल्कि आवश्यकता बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम कुछ पेड़ लगाने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: विद्यालय, गांव, शहरों और खेतों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक पौधे बड़े होकर वृक्ष न बन जाए तब तक उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल।
0: युवा साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है वृक्षारोपण में। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और यदि युवा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को अपना मिशन बना लेंगे कशिश, तो देश में हरित क्रांति लाई जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और किया भी जा रहा है। युवा केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रह रहे बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ों की कटाई को रोक रहे हैं और हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को एक पेड़ अनेक लाभ की बात को भी अपनाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, एक पेड़ जो है वो केवल छाया ही नहीं देता बल्कि अनेक प्रकार के लाभ भी प्रदान करता है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, पक्षियों को आश्रय देता है, मिट्टी का संरक्षण करता है, साथ ही वहीं वर्षा को बढ़ावा भी देता है और पर्यावरण को सुंदर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जागृति जी, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वास्तव में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे होते हैं।
0: जी हाँ,
1: हम देख सकते हैं दोस्तों कि वनों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी भागीदारी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। साथियों, हमें ऐसा विकास करना होगा जो प्रकृति को नुकसान न पहुँचाए और लंबे समय तक टिकाऊ हो सके।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कहा जा सकता है कि हरे भरे पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि सुरक्षित जीवन की नींव है। वे हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य प्रदान करते हैं। यदि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ हमारी रक्षा करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी देने के लिए श्रोता साथियों, हमें आज ही पेड़ लगाने हैं और उन्हें बचाने का संकल्प लेना होगा। जब भी हम किसी पेड़ की छाया में बैठे उसकी ठंडी हवा का आनंद लें या उसके फल खाएं, तब ये याद रखें श्रोताओं कि वो पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं है बल्कि जीवन का रक्षक है। यदि हम आज एक पेड़ बचाते हैं कशिश, तो वास्तव में हम आने वाले कल को बचाते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहा गया है कि हरे भरे पेड़ ही सुरक्षित जीवन का आधार है। इनकी रक्षा में ही हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, आज हम जिस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं वह हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। जागृति जी, यदि हम आज जंगलों को बचाने में असफल रहेंगे साथियों, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारा नैतिक दायित्व यही है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और एक हरित तथा सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। याद रखें श्रोता साथियों, यदि हमें सुरक्षित स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें हरे भरे वनों को तो बचाना ही होगा। जब जंगल मुस्कुराते हैं साथियों तो धरती मुस्कुराती है।
0: जी हाँ।
1: और जब धरती मुस्कुराती है तो मानव जीवन सुरक्षित और समृद्ध बनता है। जागृति जी
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सभी को मिलकर हरियाली बढ़ानी है, पेड़ बचाने हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर स्वच्छ और सुरक्षित संसार उपहार में देना है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने बहुत सही बात कही। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, हमने जाना आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हरे भरे पेड़ और सुरक्षित जीवन कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो बातें तो बहुत सारी हो चुकी है और समय का मान रखना होगा। समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। आज हम बात करेंगे बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के नुकसान को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। वे चाहते हैं श्रोता साथियों कि उनका बच्चा सफल बने, सम्मान पाए और जीवन में आगे बढ़े।
0: जी हाँ,
1: लेकिन कई बार बच्चों का भला करने की इसी कोशिश में हम उन पर अपनी पसंद और अपनी अधूरी इच्छाएं थोपने लगते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: हम यह तय करने लगते हैं कि बच्चों को क्या बनाना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए या किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल श्रोता साथियों ये उठता है कि क्या बच्चों के सपनों और रुचियों को नजरअंदाज करके उन्हें वास्तव में सफल बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में जानेंगे कशिश इस विषय पर विस्तार से ढेर सारी बातों को। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के नुकसान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे साथियों को ये बता दिया था कि कई माता पिता अपनी रुचि और अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। वो ये निश्चित करते हैं कि उनके बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा अपनी रुचियों पर ध्यान न देकर हमारी यानी कि माता पिता की रुचियों पर ध्यान देने लगता है तो वो अपना भविष्य जी नहीं पाता और अपने जीवन को भी नहीं जी पाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हम कह सकते हैं कि बच्चों के आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि दोस्तों जब बच्चों की बात सुने बिना उनके लिए फैसले किए जाते हैं तो इससे धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनकी रुचियों का कोई महत्व ही नहीं है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण नहीं है। अंजलि जी, जब किसी बच्चे को बार बार ये बताया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वह अपने निर्णयों पर भरोसा करना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल,
0: फिर धीरे धीरे वह हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर ही निर्भर होने लगता है। ऐसे में दोस्तों ये कहा जाता है कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव होती है और जब ये कमजोर पड़ जाए तो बच्चों का विकास भी इसमें प्रभावित हो सकता है।
1: जी हाँ, यही अब बात आती है कशिश की प्रतिभा और उनकी रुचियां दब सकती हैं। दोस्तों हर बच्चा अपनी अलग पहचान और क्षमता लेकर जन्म लेता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी को खेल पसंद होता है कशिश, तो किसी को संगीत, तो किसी को चित्रकला और लेखन।
0: जी जी,
1: लेकिन जब बच्चों को अपनी रुचि के बजाय किसी और दिशा में धकेला जाता है तो उनकी स्वाभाविक प्रतिभा उभर नहीं पाती।
0: बिल्कुल,
1: कई बार बच्चे मजबूरी में वह करते रहते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है, जबकि उनकी असली क्षमता किसी और क्षेत्र में होती है।
0: जी हाँ,
1: इस तरह समाज भी कई प्रभावशाली बच्चों को खो देता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के साथ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो ही जाती है। माता पिता सोचते हैं कि मेरा ये बनने का सपना था, मैं नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे को बनाऊंगा, भले ही उसमें वो प्रतिभा हो ही या नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों की रुचि को, उनकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: जब उनकी प्रतिभा उस चीज में है जो हम उसे बनाना चाहते हैं तो ही उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना है।
0: बिल्कुल,
1: अन्यथा जबरदस्ती अपने सपने हमारे बच्चों पर हमें नहीं थोपने हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने भी सही कही। यही अगर बात करें पढ़ाई और काम बच्चों को बोझ लगने लगता है तो साथियों जब कोई काम मन से नहीं किया जाता है तो उसमें आनंद नहीं आता है। और ये बात जो है वो हमारे माता पिता पर भी लागू होती है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि श्रोता साथियों हम खुद ही का उदाहरण अगर देख लें तो जब हम किसी कार्य को करते हैं और जब हम उस कार्य से उब जाते हैं तो हम उस कार्य में आनंद नहीं लेते हैं और आगे जाकर हम उस कार्य को करना चाहते ही नहीं है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों हम अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? यदि बच्चा अपनी पसंद के बजाय केवल दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई या फिर कोई गतिविधि कर रहा है तो धीरे धीरे उसका भी उत्साह कम होने लगता है।
1: जी जी,
0: वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने के बजाय अंजलि जी उसे एक बोझ समझने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है श्रोता साथियों कि उसकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन दोनों इस चीज में प्रभावित होने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का विकास रुक जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि माता पिता अगर अपने सपने बच्चों पर थोपते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी हमारी बातें चल रही है, बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के क्या नुकसान है।
1: बिल्कुल,
0: हमने जाना कि इससे आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, प्रतिभा और रुचियां दब जाती है, पढ़ाई और काम बोझ लगने लगता है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ कशिश हम देखते हैं कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लगातार अपेक्षाओं का बोझ कशिश बच्चों को मानसिक दबाव पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। यह चिंता और तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ बच्चे चुपचाप दबाव सहते रहते हैं, जबकि कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन, उदासी और निराशा भी दिखाई देने लगती है। इसलिए बच्चों की भावनाओं को समझना और उनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात कर रिश्तों की, तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता विश्वास और संवाद पर आधारित होता है। लेकिन अंजलि जी, जब बच्चों को ये लगने लगता है कि उनके बातों को महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, तो वे अपने मन की बातें साझा करना भी कम कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे श्रोता साथियों संवाद में कमी होने लगती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है। ऐसे में हमें ये नहीं करना है श्रोता साथियों, क्योंकि एक स्वस्थ परिवार वही होता है जहाँ बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सके। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश, अब यही बात आती है कि अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो बच्चे निर्णय भी नहीं ले पाते।
1: बिल्कुल,
0: उनके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है
1: जी।
0: लेकिन यदि हर निर्णय माता पिता ही लेते रहे तो बच्चे स्वयं सोचने और निर्णय लेने का अभ्यास ही नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल,
0: भविष्य में जब उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं तो वे असमंजस्य में पड़ जाते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, इस तरीके की चीजें उनके सामने आती है। इसलिए बच्चों को उम्र के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने के अवसर हमें जरूर देने हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें पता चले कि जो वे निर्णय ले रहे हैं उसमें सही निर्णय कौन सा है और गलत निर्णय कौन सा है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: इसी के साथ दोस्तों, जब बच्चों पर किसी और के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी होती है तो वे असफलता से अधिक डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो वे अपने माता पिता को निराश कर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: यह डर उन्हें नए प्रयोग करने के जोखिम लेने से रोकने लगता है, जबकि सीखने और आगे बढ़ने के लिए गलतियां और असफलता से सीखना उतना ही जरूरी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यहीं अगर बात करें अपनी पहचान खोने के खतरे की, तो हर बच्चे की अपनी सोच, अपनी रुचि और अपना व्यक्तित्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब वह लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है तो हम देखते हैं कि कई बार वह अपनी असली पहचान से भी दूर हो जाता है। उसे श्रोता साथियों ये समझ ही नहीं आता कि वह वास्तव में चाहता क्या है और किस काम में उसे खुशी मिलती है। ऐसे में जीवन की वास्तविक संतुष्टि बच्चों को तभी मिलती है साथियों, जब वे अपने मन की करें, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। क्योंकि अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि बच्चों को मार्गदर्शन देना जरूरी है, लेकिन उनके लिए हर निर्णय लेना जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: बच्चों को अनुभव, सलाह और सहयोग की जरूरत होती है साथियों, नियंत्रण और दबाव की नहीं। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि हर बच्चे का एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी रुचियाँ होती है, अपने सपने होते हैं और क्षमताएं होती हैं। यदि हम उन सपनों को समझेंगे साथियों, उनका सम्मान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तो बच्चे न केवल सफल होंगे बल्कि खुश और संतुष्ट भी रहेंगे।
0: बिल्कुल, इसी के साथ कशिश कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बच्चों का पालन पोषण केवल उन्हें बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने की कला भी है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर हम ये मान लेते हैं श्रोता साथियों कि जीवन का अनुभव हमारे पास अधिक है, इसलिए हम बच्चों के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बदलते समय के साथ बच्चों की सोच, उनकी रुचि और सपने भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उन्हें समझना, उनकी बातों को महत्व देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।
1: जी हाँ अंजलि
0: जी, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। जिस राह पर चलकर एक व्यक्ति सफल हुआ है, जरूरी नहीं है कि वही राह हर बच्चे के लिए भी सही हो। हर बच्चे की अपनी विशेषता, अपनी गति, अपनी मंजिल होती है। इसलिए बच्चों को एक तय सांचे में ढालने के बजाय उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए कि एक बच्चे को उसकी पसंद की उड़ान देने का साहस शायद आज छोटा कदम लगे, लेकिन यही कदम कशिश कल उसके भविष्य, उसके आत्मसम्मान और उसकी सच्ची खुशी की नींव बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए बच्चों को आदेश नहीं, समझ दे, दबाव से नहीं, प्रेरणा से और नियंत्रण से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही एक खुशहाल बचपन और सशक्त भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है।
1: जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें ढेर सारी रही कि एक माता पिता होने के नाते अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को हमें अपने बच्चों पर नहीं थोपना है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का विकास रुक जाता है, साथ ही उनके जीवन की जो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं वो भी प्रभावित होने लगती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसी ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम जान पाए हैं। अब देख रहे हैं साथियों कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा तो अंजलि जी हम जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर सुनते हैं अंतिम गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणेमान स्वागत करो हा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खेतरा ने हेड़ माते अपने पौधा रोपण हरते करने आनु हूँ महत्व है। भाई बोनो खेती केवल फसल उगावानुं नाम नथी बल्कि आ आपणे मिट्टी पाणी पेड़ पौधो ने पर्यावरण ने वैश्विक संतुलन बनावीने राखवानुं नाम है। आज आपणे जाणांगा आणा विषयने वारामे घणाकानी वातानी पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहेला आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी श्रोता साथियों के साथ बातचीत रहने वाली है। पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है?
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, प्रकृति और सामुदायिक जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज हम देख रहे हैं अंजलि कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये पलायन केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं श्रोताओं, बल्कि गांव की शक्ति, संसाधनों और सामाजिक संरचना का कमजोर होना भी है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे कि पलायन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बातें इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कभी कभी।
1: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
2: जी हाँ,
1: जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है पलायन रोकने में गांव की भूमिका को लेकर।
2: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यदि गांव का समुचित विकास किया जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो पलायन को काफी हद तक हम रोक सकते हैं। इसीलिए पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है उसी को लेकर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पलायन आखिरकार क्या है और क्यों होता है। तो श्रोता साथियों, जब लोग अपने गांव या क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने या काम करने जाते हैं तो उसे पलायन कहा जाता है। भारत में अधिकांश पलायन गाँव से शहरों की ओर होता है। पलायन के कई कारण है, जिसमे रोजगार की कमी, कृषि से घटती आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक असमानता और आधुनिक जीवन की चाह लोगों को गांव छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब गांव में श्रोता साथियों व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और आय का साधन नहीं मिलता है तो वह मजबूरी में शहर की ओर जाता है। इसलिए समस्या का समाधान लोगों को रोकने में नहीं बल्कि गांव को सक्षम बनाने में है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सम्मान हमें जहाँ मिलेगा वहीं इंसान भी बसता है। जैसे कि पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार की कमी होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि गांव में रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे तो लोग अपने परिवार और समाज को छोड़कर बाहर भी नहीं जाएंगे। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें खेती के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।
2: जी जी,
1: हम देखते हैं अंजलि कि मनरेगा जैसी योजनाएं भी ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से न केवल आय बढ़ती है बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि रोजगार जब गांव में आएंगे तो पलायन खुद ही रुक जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के अधिकांश ग्रामीण परिवार जो है वो खेती पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती लागत और घटती आय के कारण किसान जो है वो खेती से विमुख हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: आधुनिक खेती में हमें जैविक खेती, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करनी होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। और यदि खेत से जुड़ी जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वो गांव में स्थापित हो जाए तो स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। कहना चाहेंगे कि कृषि को लाभकारी बनाना जागृति जी पलायन रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग और विकास बहुत जरूरी है। जैसे कि हर गांव में कुछ न कुछ विशेष संसाधन होते हैं, कहीं वन संपदा है, कहीं खनिज है, कहीं हस्तशिल्प और कहीं पर्यटन की संभावना है। यदि इन संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उचित उपयोग किया जाए तो गांव में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: इससे लोग अपने क्षेत्र में रहकर ही प्रगति कर सकते हैं और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।
2: जी,
1: तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय संसाधन अगर हमारे आधार बनेंगे तभी हम गाँव को सशक्त और तैयार कर सकते हैं।
2: जी हाँ जागृति जी, और इसी के साथ शिक्षा और कौशल विकास भी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि अच्छी शिक्षा और कौशल विकास की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। श्रोता साथियों, युवा बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुक कर जाते हैं। यदि जागृति जी गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, डिजिटल शिक्षा हो और कौशल प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध हो तो युवाओं को अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इससे युवा जो है वो कौशल विकास के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी प्रेरित हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा और कौशल हो विस्तार तभी बनेगा गांव आत्मनिर्भर और मजबूत आधार।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से पलायन रोकने में गांव की क्या भूमिका होती है, तो ये बातें निरंतर हम ऐसे ही करते रहेंगे हमारे श्रोता साथियों से।
2: जी जी।
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि पलायन क्या होता है, क्यों होता है और पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसी के साथ जागृति जी अब आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की। तो हम देखते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ढेर सारी बढ़ गई है। ऐसे में अगर गाँव में ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो तो ग्रामीण लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और वो समय पर इलाज करवा पाए। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत से ग्रामीण जो लोग हैं वो इसी कारण से शहर में रहना पसंद करते हैं कि वहाँ पर कम से कम सुविधाएं तो हैं, जैसे तैसे हम हमारा जीवन काट लेंगे लेकिन पर्याप्त तो सुविधा मिलने से इंसान की जान बच जाएगी। तो ऐसे में हमें गाँव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी तो लोग जो है वो शहरों पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं और युवाओं का भी सशक्तिकरण जरूरी है। जैसे कि महिलाएं और युवा गांव के विकास की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग, हस्तशिल्प और स्वरोजगार योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और स्थानीय रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब गाँव का युवा गाँव में ही अवसर देखेगा तब पलायन कम होगा। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायतें गांव के विकास की धुरी है। यदि पंचायतें योजनाओं का सही क्रियान्वयन करेंगी और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी तो गांवों का तेजी से विकास हो सकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता के माध्यम से पंचायतें पलायन रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आज का युग तकनीक युग है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों की इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को नई दिशा दे सकती है। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण युवा घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नई संभावनाओं से जुड़ सकते हैं। कहना चाहेंगे जागृति जी कि तकनीक गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का सशक्त माध्यम है। गांव की सबसे बड़ी ताकत उसका सामुदायिक जीवन होता है। जब लोग मिलकर विकास कार्यों में भाग लेते हैं श्रोता साथियों तो समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से होता है। सामूहिक प्रयास, सहयोग और सामाजिक एकता गांव को मजबूत बनाती है और यही भावना पलायन को रोकने में सहायक होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा भी बहुत जरूरी है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि पलायन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय आत्मनिर्भर गांव है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा गांव जहां रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल, ऊर्जा और विकास के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाए। आत्मनिर्भर गांव केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता अंजलि, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होता है।
0: जी जी।
1: और यही सच्चे स्वराज की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती भी है। इसे रोकने के लिए गांवों को मजबूत, आत्मनिर्भर और अवसरों से परिपूर्ण बनना होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी, कृषि विकास और स्थानीय संसाधनों के उचित उपयोग से श्रोता साथियों गाँव को विकास का केंद्र बनाया जा सकता है। जब गांव में ही सम्मानजनक जीवन, रोजगार और विकास के अवसर उपलब्ध होंगे जागृति जी, तब लोगों को शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मजबूत गाँव ही मजबूत भारत का आधार है, इसलिए पलायन को रोकने की शुरुआत गाँवों को सशक्त बनाने से ही हो पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि गांव केवल रहने की जगह नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने की कार्यशाला है। यदि गांव समृद्ध होंगे तो शहरों पर बोझ कम होगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी और सच्चे अर्थों में स्वराज का सपना भी साकार होगा। इसीलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाएं जहां कोई मजबूरी में पलायन न करे बल्कि अपने गांव में रहकर गर्व के साथ विकास की नई कहानी लिखे।
0: जी जी।
1: पलायन को केवल लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की घटना मान लेना उचित नहीं होगा। ये उस स्थिति का संकेत है अंजलि, जब किसी व्यक्ति को अपने ही गांव में अवसर, सुरक्षा और भविष्य दिखाई नहीं देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए पलायन रोकने का अर्थ लोगों को रोकना नहीं बल्कि गाँव को इतना सक्षम बनाना है श्रोताओं कि वहाँ रहने वाला व्यक्ति अपने सपनों को अपने ही परिवेश में पूरा कर सके।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन की दिशा बदलने के लिए हमेशा बड़ी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। कई बार बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों, दृष्टिकोण और दैनिक आदतों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम समस्याओं को अवसर देना सीखते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और अपने भीतर की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तब धीरे धीरे जीवन नई राह पकड़ने लगता है जो कठिन रास्तों को भी आसान बना देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए यदि हम बेहतर जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बदलती हुई सोच ही नए सपने, नए प्रयासों और नई सफलताओं का आधार बनती है।
1: बिल्कुल अंजलि, बस आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों को समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में देखेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
0: जी जी।
1: जिस दिन गांव का युवा ये महसूस करेगा कि उसका भविष्य उसके अपने गांव में सुरक्षित और उज्जवल है, उसी दिन पलायन की समस्या स्वतः ही कम होने लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, हमें ऐसे गांवों के निर्माण का संकल्प लेना है जहां खेतों में हरियाली हो, घरों में खुशहाली हो, युवाओं के हाथों में काम हो और लोगों के मन में अपने गांव के प्रति गर्व हो। यही वो मार्ग है जो संतुलित विकास, सामाजिक समृद्धि और सच्चे स्वराज की ओर ले जाता है।
0: जी हाँ।
1: गांव केवल बसावट नहीं, भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है, और जब गांव आगे बढ़ेंगे अंजलि, तब विकास के रास्ते हर घर तक पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि पलायन क्या है, क्यों होता है और इसका प्रभाव हमें कैसे देखने को मिलता है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है,
0: बिल्कुल
1: सावधानी उसके सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो व्यक्ति आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है श्रोता साथियों, वह कल दवाइयों पर नहीं बल्कि खुशियों पर खर्च करता है,
0: बिल्कुल।
1: और जैसा कि हमारी शुरुआती पंक्तियों से ही आप जान गए होंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि आज की सावधानी कल का बेहतर स्वास्थ्य जीवन। श्रोता साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी अचानक आती है, लेकिन सच यह है कि अधिकांश बीमारियां हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों का परिणाम होती है,
0: बिल्कुल।
1: वहीं छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रख सकती है।
0: जी जी,
1: इसलिए कहा जाता है कशिश के रोकथाम इलाज से बेहतर होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज की सावधानी, कल का बेहतर स्वस्थ जीवन। श्रोता साथियों, अगर स्वास्थ्य के वास्तविक अर्थ को हम जाने तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं होता अंजलि जी, बल्कि इसका वास्तव में अर्थ है स्वस्थ वही व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हो। दोस्तों, यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव से भरा हुआ है तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उसी तरह यदि मन खुश है लेकिन शरीर लगातार बीमार रहता है अंजलि जी, तब भी हम कह सकते हैं कि जीवन का आनंद अधूरा रह जाता है।
1: जी जी, यही कशिश अब बात आती है कि आज की छोटी सावधानियां क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारी रोजमर्रा की कई आदतें भविष्य का स्वास्थ्य तय करती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, साफ सफाई रखना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, समय पर सोना, पर्याप्त नींद लेना, साथ ही तंबाकू, शराब और अन्य जो नशे होते हैं उनसे दूर रहना।
0: बिल्कुल।
1: समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं कशिश, लेकिन इनका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत गहरा होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम लगातार शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि अनेक समस्याएं जन्म लेने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव, कमजोरी, पाचन संबंधित समस्याएं। श्रोता साथियों, इनमें से अधिक बीमारियां अचानक नहीं आती बल्कि वर्षों की गलत आदतों का परिणाम होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। अब यही अगर इसी के आगे हम बात करें संतुलित भोजन के महत्व की, तो साथियों, हमारा भोजन ही हमारी दवा भी बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और बीमारी का कारण भी। देखते हैं कि थाली में जितनी विविधता होगी अंजलि जी, शरीर को उतने ही आवश्यक पोषक तत्व मिल पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को भोजन में कुछ चीजें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, मोटे अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, पर्याप्त पानी, और साथ ही दोस्तों जंक फूड, अत्यधिक तेल, नमक और चीनी का सेवन आपको सीमित रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके

0: से हमारे स्वास्थ्य पर संतुलित भोजन का महत्व होता है और जो कुछ जरूरी चीजें होती हैं वो हमें अपने आहार में जरूर शामिल करनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं साथियों।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि रोज केवल 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां कई बीमारियों से बच सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है, हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रित रहता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जरूरी नहीं कि महंगे जिम जाएं, तेज चलना, योग, साइकिल चलाना, घर के काम भी अच्छे व्यायाम हो सकते हैं। इसी के साथ स्वच्छता ही सुरक्षा है, यानी कि कशिश कई संक्रामक बीमारियां केवल साफ सफाई अपनाकर रोकी जा सकती है। जैसे कि हाथ धोना, साफ पानी पीना, भोजन ढककर रखना, घर में आसपास सफाई रखना, मच्छरों से बचा, ये आदतें श्रोता साथियों पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लापरवाही के चलते इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने में ये सोच लेते हैं कि इससे हो ही क्या जाएगा, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाही हमारी आगे चलकर हमारी आदत बन जाती है और आदतें बहुत गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां कर सकती हैं। इसलिए स्वच्छता ही सुरक्षा है, इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कर रहे हैं हमारे श्रोता साथियों से हमारे कल के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान रखने की।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आज की भाग दौड़ में मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य होता है। इसलिए हमें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी बात साझा करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी है, योग ध्यान करना है, मोबाइल का सीमित प्रयोग करना है। इसी के साथ दोस्तों, खुश मन स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव अभी के समय की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है स्वास्थ्य संबंधित।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम बच्चों को अच्छी आदतें बचपन से ही सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में आप उन्हें सिखाएं हाथ धोना, पौष्टिक भोजन खाना, खेलकूद में शामिल होना, समय पर सोना और मोबाइल कम इस्तेमाल करना। क्योंकि अंजलि जी, स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ भारत का भविष्य होते हैं।
0: जी जी।
1: वहीं अगर बात की जाए महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो देखा जाता है कि महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अक्सर भूल जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को ये समझना चाहिए कि वे संतुलित भोजन का सेवन करें, नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य की जांच कराती रहें, पर्याप्त आराम की भी उन्हें जरूरत है, और साथ ही आयरन और कैल्शियम युक्त आहार उन्हें शामिल करना चाहिए।
0: जी जी।
1: साथ ही उनको अंजलि जी, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है।
0: जी हाँ। यही कशिश अब बात आती है बुजुर्गों की देखभाल की। तो श्रोता साथियों, बढ़ती उम्र में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन, समय पर दवा और परिवार का भावनात्मक सहयोग। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि मौसम बदलने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी।
0: इसलिए उबला और स्वच्छ पानी पिए, ताजा भोजन करें, पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और साथ ही बुखार होने पर स्वयं दवाई न लें बल्कि डॉक्टर की सलाह से हमें दवाई लेनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: यदि हम बीमारियों से बचना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो पूरे समाज को मिलकर कुछ कार्यों को करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखनी होगी, टीकाकरण पूरा कराना होगा, स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी फैलानी होगी, अफवाहों से बचना होगा और जरूरतमंद की मदद करनी होगी। जब पूरा समाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा कशिश, तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी न धन है, न पद है और न ही प्रसिद्धि। सबसे बड़ी पूंजी श्रोता साथियों हमारा स्वास्थ्य है।
0: बिल्कुल।
1: यदि शरीर स्वस्थ है तो कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है, और सपनों को भी साकार करने की शक्ति बनी रहती है अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य की रक्षा किसी एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। ऐसे में हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को जरूर अपनाएंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे साथियों, और साथ ही संतुलित भोजन करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अपने परिवार और समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएंगे अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम अपना कार्य समय पर कर पाते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य ही हमारा साथ नहीं देता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो कार्य है वो अधूरा रह जाता है।
1: जी।
0: इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंचकर हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाए, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसे हर दिन अपने अच्छे निर्णयों और अनुशासित आदतों से मजबूत बनाना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने भविष्य को आज की सोच, आज के व्यवहार, आज की सावधानियों से ही आकार देते हैं। जब हम समय पर भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, स्वच्छता का पालन करते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तब केवल बीमारियों से ही नहीं बचते बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी स्वास्थ्यप्रद बातें रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे दोस्तों को जरूर पसंद भी आई होंगी।
0: जी जी।
1: क्योंकि अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
5: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
4: होवे जागृति पूर्ण, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि पूर्ण, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति पूर्ण, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

बंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे कि साथियों, गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है। जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुख होता है, और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिरकर उठना सिखाती है। और दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है, या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है, या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है, तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों, तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती। जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, और एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों, हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यहीं अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, तो विदा जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।